0: Yenu.
1: Kanung Rose, Mamekin.
2: ए मस्या छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिले मामु
0: यंगी रिमठिम रिंगी ग्यो थन लबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयास की
3: कार्यक्रम आदिवासी संसार
0: रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज जरी
1: नाको रसे मुन्न जाटनी पट्ट लाफा को के रसे की मुझनी है।

की कलम में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और गाय को मेरा मूड में डंस करेगा किसी का डैडी से नहीं डरेगा।

0: देशमा पेट भरिने बोनस चाउचाउ।
1: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स, शुक्ला गण्डकी साथ सेरा, प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा, मोबाइल 98562279।
2: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराई 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन के आवाज।

मेरा साया है जोया, वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जोया, हम गटर में पले हैं, गटर में ही जिएंगे और गटर में ही

0: This is Radio Dhor Barahi, 103.8 megahertz.
1: Station 1. Studio Taichin.
2: Aile, diusoko ek bajyo.
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301।
4: Cameras, standby.
0: Reload music.
4: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू

0: connect your dream, connect your future, still connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. शुक्ला गण्डकी चार तुलेगौड़ा वा इन डिपार्टमेंट भवन सँगै मोबाइल 9856324093 र 9856380073।
2: आस्था अनि भरोसा घर निर्माणको विश्वासिलो आधार अनयारा कन्स्ट्रक्सन एन्ड ट्रेड प्राली गाछेपानी।
3: हजुर, घर निर्माण, बाटो, नाला, सामुदायिक भवन, विद्यालय आदि निर्माणको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सोलिड

0: स्टूडियो तान्छे
1: अहिले बिहानको 5 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935001